0: गिलास तुम काफी।
1: सूतु सूत सानने रे जगले मंदे मंती के नाम मत आकाश के आराम पिछले कम से दिखूं तुम चला रहे म्याना का तीन म्याना के काम रहे ते तीन म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रीस के जान कों को रीस के जान को वा ये जन के जान मंती के नाम मत आकाश के आराम ने ये जन के रीस के जान पा ना जब फिक्री जान मु उतन मान लेकिन फिर से लेन देसाना को दे मनारा का ना सेमु जान ले फिर देसाना दे फिर मनारा का नहीं दे ये देमरा रे ना तब फिर तो सोम तांस मिरी जाने सेम जब दे दे
2: क्या ना का फिर ना सु पफतारा कौन सा ये ले फिर ना का फिर ना जाने मार सुत सा उन अच्छा फिर ले तीन रुपये का नहीं के ना
3: बुला चुना ये ना Saya nak buat apa? Suit tu jadi semua fikirlah tentang suit. Suit sahaja jele suit. Suit tu saya nak fikirna. Timnya nak cari syarat tu nanti tiada walas atau sihir. Sosok tu mula walas atau tidak sihir. Saya mampu yang nak jauh yang zaman tu ni mampu nak jira ke sihir. Tapi tanjo nak tunggu apa ni?
4: Saya nak fikirna suit tu. Le ulah nanti tunggu sa. Apa ni? Tiko nak kene ciri arah tempat nane tiko. Arakan fanrin we tei teta Madagascar te sutun mitso san ye fankerezana wasre te mafinasha ne tonareo fa tena we makafit ko antilus mamtsikti izay tena we tsimanatsaly ti zany e ye tsimtoviny any velany fa manana netsika manokana tsika
0: sotra tombokola sotra tombokovavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: ले तेना मपलाई डन ले दंगान ले फ्रे तालू जाए 200,000 250,000 मंदे अतिलियारा अम्जो जानिया 650,000 ने फिर फसाहीरा नजो विरंगा दिंबुला पे कारण रेकोन फ्रे जेजन मो रिमार्क थी कोतो
2: जहाँ जो हंदे हा तुलियारा फ्रे अम्जो 100,000 Mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 8,000 nenay eto zao nelanelana ara-dalàna.